0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। जापान की वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची सानाई का कहना है कि मुल्क मुमकिन तौर पर जून के खाम तेल की खरीदारी के हदफ का कम अज कम 70% मुख्तलिफ रास्तों और ज़राए से हासिल कर लेगा। हुकूमत ने मुतलका वुज़रा का इजलास मंगल को मुनाकिद किया, जिसमें ईरान जंग के असरात पर गौर किया गया। ताकाइची ने कहा, जून के लिए उम्मीद अफजा मंजरनामे को देखते हुए हम इस माह कौमी ज़खायर से खाम तेल की तीसरी खेप जारी नहीं करेंगे। हम खरीदारी को मतनव्वो बनाते रहेंगे ताकि मुल्क की मजमूई ज़रूरियात के मुताबिक तेल हासिल किया जा सके और कौमी ज़खायर में कमी को कम से कम रखा जाए। दूसरी जानब तेल के मारूफ जापानी होलसेलर इदेमित्सु कोसान ने भी खाम तेल के हसूल की अपनी सलाहियत के हवाले से उम्मीद का इजहार किया है। इदेमित्सु कोसान के सदर साकाई नोरी आकी ने कहा कि सूरत हाल हूबहू पिछले साल जैसी नहीं है, लेकिन हम ऐसी पोजीशन में भी नहीं हैं जहां हमें सप्लाई हासिल करने में इंतहाई दुश्वारी का सामना हो। हमें यकीन है कि हम मौजूदा हालात में भी खरीदारी जारी रखने के काबिल होंगे। उन्होंने वजाहत की कि मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब से मुतबादल रास्ते मौजूद हैं जो आबनाए हुर्मस को बाईपास करते हैं। मार्च में जापानी घरेलू खर्च में मुसलसल चौथे महीने कमी आई है। हुकूमती अहदेदारों ने कहा कि सार्फिन का तासुर खराब तर हो रहा है। दाखिला उमूर की वजारत ने कहा कि मार्च के महीने में दो या दो से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल घरानों के खर्चे में अफराते जर की जमा तफरीक के बाद एक साल पहले के मुकाबले में 2.9% की कमी आई। औसत खर्च 3,34,000 येन या तकरीबन $2,100 रहा। खुराक के खर्चे में 2.9% की कमी आई। कीमतों में इजाफे के बायस मछली से मुतलिका मसनूआत, अंडों और दीगर अशिया पर खर्च कम हो गया। रोशन पहलू के तौर पर फर्नीचर और घरेलू सामान पर खर्चे में 5.5% इजाफा हुआ, क्योंकि फूड रैप और प्लास्टिक फिल्म बैग्स पर अदायगियों में इजाफा हुआ। वजारत का कहना है कि ईरान के तनाजे के दौरान सार्फिन मुमकिन तौर पर पेट्रोलियम से तैयार होने वाली मसनूआत का जखीरा कर रहे थे। मगरबी जापान में क्योतो शाही महल मौसम की मुनासबत से फर्निशिंग तब्दील करने की सदियों पुरानी रवायत के साथ मौसम गर्मा की तैयारी कर रहा है। क्रोमोगाय का इनेकाद हर साल मई और नवंबर में किया जाता है। ख्याल किया जाता है कि यह रवायत साल में दो बार अलमारियों की तरतीब बदलने के जदीद रवाज की बुनियाद है। मंगल को शाही अमूरे खाना एजेंसी के 5 अहलकारों ने शहनशाह की रोजमर्रा की रहायशगाह सैर्योदेन में मौसम सरमा के फर्नीचर और फर्श पर बिछे सामान को मौसम गर्मा की अशिया के साथ तब्दील किया। हुकाम ने तकरीबन 1 घंटा मिचोदाई कैनोपी के पर्दे तब्दील करने में गुजारा, जो आराम करने की जगह है। मौसम गर्मा के वर्जन में पर्दों में सफेद कुंजें पर फैलाए दिखाई देती हैं। एक अहलकार ने कहा कि वह चाहता है कि जहां आने वाले मौसम गर्मा की सजावट को देखें और मौसम को महसूस करें।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग के साथ सरबराही इजलास के लिए मंगल को चीन रवाना हो गए। तवक्को की जाती है कि वो तजारती और इक्तसादी मसाइल के साथ साथ ताइवान और ईरान के तनाज़े पर बातचीत करेंगे। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन से कबल ईरानी हुकाम ने बीजिंग के साथ अपने मजबूत ताल्लुकात को उजागर किया है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं। मज़ीद खबरों, तबसरों और तज़ज़ियों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

0: いらっしゃいませ。
1: すみません、お守りはありますか？
2: ちょっとここにはありませんね。
1: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
1: 行きましょう。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
5: アブミヤカサフリヒダイアナマ。イスメアチ東京ケマシュール、シャーティマカム、アサクサカタルフペシェ。ये आज के मकालमे का मकाम भी है।
6: टोक्यो के मशरकी हिस्से में वाक़े असाकुसा में हमेशा सयाहों की भीड़ होती है। कामिनारीमोन दरवाज़ा सेंसोजी मंदिर जाने वाले रास्ते का आगाज़ है। यहाँ पर लटकी हुई बड़ी सुर्ख कागजी लालटेन दूर से ही नजर आ जाती है। इसके बाद मंदिर के मरकजी हॉल की जानिब जाने वाली नाकामी से दोरी नामी गली है। ये 250 मीटर तवील शॉपिंग स्ट्रीट है।
5: इस गली में दोनों जानिब कई दुकानें हैं जिनमें तहाइफ से मिठाइयों तक हर किस्म की अशिया फरोख्त होती हैं।
6: मिसाल के तौर पर हाथ से सेंके हुए गर्मा गर्म राइस क्रैकर, निंगियो याकी नामी छोटे छोटे स्पॉन्ज केक जिनमें सुर्ख फलियों का पेस्ट होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ अकसाम की टी शर्ट्स, रिवायती फोल्डिंग पंखे और चॉपस्टिक्स भी होती हैं। नाकामी से दोरी नामी गली के आखिरी सिरे पर सेंसोजी मंदिर का मरकजी हॉल है।
5: अनवर साहब, टोक्यो स्काई ट्री भी गालिबन वहाँ से करीब है ना?
6: जी हाँ, पैदल कुछ ही देर की मुसाफत पर है। अक्सर सयाह सेंसोजी मंदिर और टोक्यो स्काई ट्री की सैर एक ही दिन में कर लेते हैं। सामीन, आपको टोक्यो आने का मौका मिले तो असाकुसा इलाके का चक्कर जरूर लगाइएगा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 13 मई बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला जैन और वाइल अखवानों से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ वार्ता के लिए चीन रवाना हुए। उम्मीद है कि वे व्यापार और आर्थिक मुद्दों के साथ साथ ईरान संघर्ष और ताइवान पर भी चर्चा करेंगे। दोनों नेता बृहस्पतिवार सुबह मिलेंगे। अक्टूबर में दक्षिण कोरिया में एपेक सम्मेलन से इतर मिलने के बाद यह उनकी पहली प्रत्यक्ष मुलाकात होगी। इसके बाद वे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा करेंगे और शाम को राजकीय भोज में शामिल होंगे। शुक्रवार को चीन से रवाना होने से पहले ट्रंप दोपहर के भोजन के दौरान भी वार्ता करेंगे। वार्ता में ताइवान प्रमुख मुद्दों में से एक हो सकता है। माना जा रहा है कि चीन सरकार ट्रंप से ऐसे बयान सुनना चाहती है जिससे उसे ताइवान पर लगाम कसने में मदद मिल सके। वहीं अमेरिका ने कहा है कि उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन चीन के खिलाफ अमेरिका की प्रतिरोधक क्षमताओं को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, खासकर इसलिए क्योंकि ईरान संघर्ष में अमेरिका अपने हथियारों का भंडार तेजी से इस्तेमाल कर रहा है। वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS ने इस बात का अध्ययन किया कि ताइवान पर चीन के संभावित हमले का क्या परिणाम हो सकता है। CSIS के रक्षा एवं सुरक्षा विभाग के वरिष्ठ सलाहकार मार्क कैसियन ने कहा कि उनके विश्लेषण से पता चलता है कि अमेरिका अब भी चीन का मुकाबला करने में सक्षम है, लेकिन नुकसान बहुत बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को कई वर्षों तक जारी रहने वाली नाजुक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा से पहले ईरानी अधिकारियों ने चीन के साथ मजबूत संबंधों को रेखांकित किया है। उनका कहना है कि अमरीकी दबाव के बावजूद चीन का ईरान के प्रति रुख नहीं बदलेगा। चीन में ईरान के राजदूत अब्दुल रेजा रहमानी फाजली ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दोनों देशों के मजबूत संबंध हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे प्राचीन सभ्यता और मजबूत सांस्कृतिक रिश्ते साझा करते हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने संघर्ष विराम वार्ता में अमेरिकी मांगों की आलोचना करते हुए उन्हें अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि वार्ता में बराबरी का लेन देन होना जरूरी है। बागाई ने कहा कि अगर आपको लगता है कि वार्ता का मतलब 100% एक तरफा संतुष्टि है तो यह वार्ता नहीं बल्कि दूसरे पर अपनी इच्छा थोपना है, और ऐसा किसी भी हालत में नहीं होगा, कम से कम ईरान के मामले में तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरानी सेना अमेरिका की संभावित जमीनी कार्रवाई सहित हर स्थिति के लिए तैयार है। ट्रंप ने मंगलवार को वॉशिंगटन में पत्रकारों से कहा था कि वे ईरान के साथ केवल एक अच्छा समझौता ही करेंगे और संघर्ष विराम की समीक्षा की जा रही है। ईरान के एक सरकारी मीडिया केंद्र का कहना है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य के परिचालन क्षेत्र को पुनर्परिभाषित कर इसकी सीमाओं का काफी विस्तार किया है। मंगलवार को जारी खबर में कहा गया है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इस क्षेत्र को एक सामरिक क्षेत्र के रूप में पुनर्परिभाषित किया है जो पूर्व में ओमान की खाड़ी में बंदरगाह शहर जास्क से लेकर पश्चिम में फारस की खाड़ी के सबसे बड़े द्वीप केशम से भी आगे के क्षेत्र तक फैला हुआ है। इसमें कहा गया है कि नई परिभाषा के तहत जलडमरू मध्य अब पूर्व से पश्चिम तक लगभग 500 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है जो पहले की चौड़ाई से 10 गुना अधिक है। खबरों के मुताबिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र के हर घटनाक्रम पर ईरान पैनी नजर रख रहा है और वह अपने राष्ट्रीय हितों का कोई भी उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाए का कहना है कि विविध मार्गों और स्रोतों के माध्यम से देश जून में कच्चे तेल की खरीद के लक्ष्य का कम से कम 70% प्राप्त कर सकता है। सरकार ने ईरान संघर्ष के प्रभावों पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को संबंधित मंत्रियों की बैठक आयोजित की। ताकाइची ने कहा कि जून के लिए आशाजनक संभावनाओं को देखते हुए हम इस महीने राष्ट्रीय भंडार से कच्चे तेल की तीसरी खेप जारी नहीं करेंगे। हम देश की समग्र जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल की खरीद में विविधता लाना जारी रखेंगे, साथ ही राष्ट्रीय भंडार में कमी को भी कम से कम करेंगे। वहीं जापान के प्रमुख तेल थोक विक्रेता इदेमित्सु कोसान भी कच्चे तेल की आपूर्ति प्राप्त करने की अपनी क्षमता के बारे में आशावादी है। इदेमित्सु कोसान के अध्यक्ष साकाई नोरियाकी ने कहा, हालात पिछले साल जैसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें आपूर्ति हासिल करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हमें विश्वास है कि हम मौजूदा परिस्थितियों में भी खरीद जारी रखने में सक्षम होंगे। उन्होंने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बाईपास करने वाले वैकल्पिक मार्ग मौजूद हैं। जापान में घरेलू खर्च मार्च में लगातार

0: चौथे महीने गिरा। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ता मनोबल बिगड़ रहा है। आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि मुद्रास्फीति को समायोजित करने के बाद दो या दो से अधिक सदस्यों वाले परिवारों द्वारा किए गए खर्च में पिछले वर्ष की तुलना में 2.9% की गिरावट आई है। औसत खर्च 3,34,000 येन से अधिक यानी लगभग $2,100 रहा। खाने पीने पर होने वाला खर्च 2.9% कम हुआ। कीमतों में वृद्धि के कारण मत्स्य उत्पादों, अंडों और अन्य वस्तुओं पर होने वाले खर्च में गिरावट देखी गई। सकारात्मक पक्ष ये है कि फर्नीचर और घरेलू सामानों पर खर्च में 5.5% की वृद्धि देखी गई। खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग और प्लास्टिक की थैलियों का खर्च बढ़ा। मंत्रालय का कहना है कि ईरान संघर्ष के बीच उपभोक्ता संभवतः पेट्रोलियम से बने उत्पादों का भंडारण कर रहे हैं। पश्चिमी जापान स्थित क्योतो शाही महल में गर्मियों के आगमन की तैयारी में सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार साज सज्जा बदली जा रही है। हर साल मई और नवंबर में कोरोमो गाय किया जाता है। माना जाता है कि इसी प्रथा से साल में दो बार कपड़े बदलने की आधुनिक परंपरा का जन्म हुआ है। शाही घराना एजेंसी के 5 अधिकारियों ने मंगलवार को सम्राट के दैनिक निवास सेइरेउदेन में शीत ऋतु के फर्नीचर और फर्श की बिछावट को गर्मियों के फर्नीचर और बिछावट में बदल दिया। विश्राम स्थल मिचोदाई के पर्दों को बदलने में अधिकारियों को लगभग 1 घंटे का समय लगा। इन पर्दों की डिजाइन गर्मियों के मौसम के अनुरूप है, जिसमें पंख फैलाए सफेद सारस के पैटर्न बने हुए हैं। एक अधिकारी ने आशा व्यक्त की कि आगंतुक गर्मियों की सजावट को देखेंगे और उस मौसम को महसूस करेंगे।
1: और इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।